रंग लाएंगी कब मेरी आहें, फिर मदीने की जानिब को जाए। सारे आलम में फिर फिर के या रब तेरा दर्द मोहब्बत सुनाए। या अल्लाह मेक यूज ऑफ अस इफ वी गो ट्रेवल इन द वर्ल्ड एंड वी लाइट अप द हार्ट्स ऑफ द पीपल विद योर मोहब्बत एंड योर लव एंड द लव ऑफ रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।

啦啊啦啊啦啊啦啊啦啊啦啊啦कैसा प्यारा नाम है आशिकों का मीना और जाम है अल्लाह जल जलालू अल्लाहु अल्लाह अल्लाहु अल्लाह Allahu Allah, Allahu Allah, Allahu Allah, Allahu Allah, Allahu Allah, Allahu Allah, Allahu Allah, Allahu

दिल की सब धड़कनों में बसा तेरा नाम, अलैका सलातु अलैका सलाम, अलैका सलातु अलैका सलाम, अलैका सलातु अलैका सलाम। हुस्न

रहे तो लब में सवार सब हैं पयादा मिसले गुबार में हूँ तेरे गुलिस्तान में सब गुल हैं बस एक अगर हूँ।

रहे तो लब में सवार सब है पयादा, मिसले गुबार में हूं ओ अल्लाह। इन योर पाथ एवरी वन हैज टेकन ऑफ, दे आर फ्लाइंग एंड सोरिंग हाई इन द एयर, द ओनली वन लाइक अ स्पेक ऑफ डस्ट ऑन द ग्राउंड इज माई सेल्फ। एवरी वन इज अ ब्यूटिफुल रोज इन योर ब्यूटिफुल गार्डन ओ माई बिलवड अल्लाह। The only one that's a thorn who's causing people nothing but problems and headaches and slicing the hearts of people with abusive language and vulgar words and swearing and cursing. He's none but myself. So each one must look at his own heart.

तेरे गुलिस्तान में सब गुल है, बस एक अगर हूं तो खार में हूं। मुझे भी कुछ फिक्र आखिरत हो, बहुत ही गफलत शियार में हूं। मुझे भी कुछ फिक्र आखिरत हो, बहुत ही गफलत शियार में हूं। रहा मैं बेकार जिंदगी भर, बस अब

मजाल है कुछ भी कर सकूं मैं जो तूने तौफीक ऐ खुदा दे, तेरी मशीयत है सब पे गालिब, यह चहें सब मेरे इरादे।